0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर।
6: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
7: रेडियो अमन नेटवर्क।

हाँ जी ग्रहण अर्जुन को तासोरे रेडियो अमन एफएम अट सी शरीय 4 बटा ग्राम पर ग्राम तासदी 4 के कॉस्मेटिक स्क्रीन 57 सरा दिए ओलो सुनत तोलो सुबह जो पूरी पर रेडियो अमन एफएम अट सी शरीय 4 बटा ग्राम मध्ये और 4 के कॉस्मेटिक स्क्रीन मखरे प्रोडक्ट आली तासो ते पारा छे तासो इस्तेमाल ओले शे दर्द तर ओ रिजल्ट पता सुला राकी जी खबर कुल मंगा छे

हां जी ग्रैन ओरिजिन को तासोरे रेडियो अमन एफ एम टच शिशरिया 4/ग्राम प्रोग्राम तास दी 4 के कॉस्मेटिक स्क्रीन 57 सरा दिए ओले सुना तुर दुला सुबह जो पूरी पर रेडियो अमन एफ एम टच शिशरिया 4/ग्राम बांदी और जी 4 के कॉस्मेटिक स्क्रीन तास ल मुख्तलिफ प्रोडक्ट आडी चेगे की दी ब्यूटी क्रीम दी एक्नी क्रीम दी एक्नी फेस वॉश दी स्ट्रॉबेरी फेस वॉश दी तिल दी शैम्पू दी फेशियल दी कोल्ड क्रीम दी दिगाखुनो पाउडर दी साबुन दी मुख्तलिफ किस्म कलवंजी साबुन दी वड़ो जात को साबुन दी दाहर से बता सुता दी मुहसिन शाह पे दुकान की जेल मोड़ सर मुखामख दा बता सुता हर से मेला वी दी ग्रान ओरिजिन को खबर को लंगा

0: はい。
1: रेडियो अमन रेडियो अमन रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का एक नई दुनिया बनाने ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का जज्बा है आपको बाखबर रखने का जज्बा है आपको बाखबर रखने एक अज्म अपनों को पास लाने का बिछड़ों को फिर से मिलाने का एक जज्बा आपको खुश रखने का आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा
2: शुक्रिया आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।

हाँ जी ग्रहण अरुण को तासोर रेडियो अमन एफएम 88.4 बटा ग्राम प्रोग्राम दिसम के दिन औ दुनिया ये विनेत्र 2 बजे पूरी दा प्रोग्राम तासोर रेडियो अमन एफएम 88.4 बटा ग्राम बांदी और जी खबर को लमंगा छि ब्या दी पसि मंगा हिसी वीले दी खजी औ दी खावन खजा मडशी नु खावन तब सुई से मिलावेगी खावन मडशी नु खजी तब सुई से मिलावी सुई से मिलावी कुरान करीम सूरत النساء आयत नंबर 12 के दा تفصیل سره الله رب عزت ذکر کړ دي کله چې خزه مړ شي او د دې خزي جات کیږي

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: अलहम्द इस्लामिक इंटरनेशनल पब्लिक हाई स्कूल बटाग्राम।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: Radio Aman Network, News and Information Station.
1: Radio Aman Network,
2: Pegham Aman Hai,
3: Pyar Ki Ek Duniya Lekar,
4: Mohabbat Samet Kar.
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क
6: रेडियो अमन नेटवर्क मन राज

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: अलहम्द इस्लामिक इंटरनेशनल पब्लिक हाई स्कूल बटाग्राम लतीर उलोशमार कलूना तालीम पर मैदान की खुल खिदमत तबसर कभी नकाम बची खुल बची गणी दौर हाजिर तालीम वरकवल सरा सरा माशुमानों के इखलाकी किरदार साजे बांधे हम खुसूसी तवज्जो साथी कमचे तालीम पर मैदान के और बटाग्राम के दतीर उद्रव कालूना टॉप पोजिशन होल्डर इदारा दा अलहम्द इस्लामिक इंटरनेशनल पब्लिक हाई स्कूल बटाग्राम जमुन खुसूसियात द दौर जदीद तालीम वरकवल माशुमानों के इस्लामी अकदार रावस्तल जो सफा सुथरा और तालीमी माहौल वरकवन के इदारा द स्कूल फुल ट्रांसपोर्ट और द सिक्योरिटी बेहतरीन इंतजाम कंप्यूटर लैब और द लोबो खपल मैदान खुमश्ता नो दखपल औलाद मुस्तकबिल रोखा नकड़े मुंगसरा द प्ले ग्रुप नवाला तर नाइन्थ क्लास पूरी द तुलबो तालिबात प महदूद सीटों बांधे दाखिले शुरू दी नो पता याद साथ अलहम इस्लामिक इंटरनेशनल पब्लिक हाई स्कूल निस्त वावडा ऑफिस गेरवली बाजार बटाग्राम मजीद द मालूमातु द पारा द टेलीफोन शमेरा दा 0997-310-444 मोबाइल नंबर दी 0345-94-72-137।